ये एड ए या लुकिंग ग्लास आज नहीं लाज जजीद और ले ए चुक अद ए या पोकर जो ए या बादेद और आस्टर दादी नीला ए ले बिड़ रूट बैली दे जो काको ए दी खस्ती पोकर जो ए आदे खत्रा ही खाई अको के या ए बस बाहुजन